0: rakhai jayam shabd hoy dhumapan vadila masin lagi kalpana kirtan kari asukti ke kaani ki varatra nishakar ko se paati swasth jivan apnai
1: video ko baba fm par sarvi pasari sandesh
2: namaskar nirmala jayam sandesh आसली नजर पालिका प्रधान मंत्रालय प्रधान मंत्री है और प्रॉपर्टी ट्रेड के मुद्दे को प्रधान मंत्रालय स्नातक सत्र के लिए काउंसिल मंत्रालय प्रधान मंत्री हम लोगों को प्रॉपर्टी ट्रेड के मुद्दे को प्रधान मंत्रालय इंटरेस्टी भावनाओं के अनुसार प्रवासी सुबह मिली की जनती स्पीड पर जाएगी लगाए समय काम का प्रबंधन को आपसे उत्तर देने का चालू आपका चालू करने का चालू विशाल चीज़ ने तो ये नास्तावे को आपसे उत्तर देने का चालू आपने आपसे उत्तर देने को ताकि कोई कोई चीज़ भाई हमारा बारे या हमारा बारे जिन्हें जिन्हें तीन बारे सिखाने जिन्हें आए नाले कोई परस्पर जिन्हें आपसे उत्तर देने को चालू धेरै ठाउँमा त्यस्तो सिफारिसहरू आएर उपचारहरू पनि सफल उपचारहरू भइसकेको छ र अब घाउ खतिरा कस्तो सुकै घाउ खतिरा भए पनि सबै घाउ खतिराहरूमा हामीहरू औषधि उपचार गर्ने गर्छौँ जस्तै मासु पुऱ्याएको मेरो फोन नम्बर 95 86 128 98 86 128 98 20 21 41 हो र एकपटक सेवा गर्दै मौका अवश्य दिनुहोला हस् धन्यवाद।

0: जाते तो मजा नहीं पड़ा।
1: विश्वास लगना वो सही जानकारी पैदा केंद्र का नाथ आधिकारिक इसलिए नेपाल गुवाहाटी में जाकर आवश्यक जानकारी दिखाई दिया। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण शाखा राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केंद्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपाल का साथ ही विपिन मूल्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संबद्ध सर्वोच्च अनुसंधान केन्द्र संगठन सहकार द्वारा रोटरी इंटरनेशनल एवं रोटरी क्लब ऑफ काठमांडू मित्र का साथ ही विश्व भरका रोटरी फ्रेंड्स एवं पार्टनर क्लब द्वारा जनहित का लागि प्रस्तुत संदेश।

चार बार एक वर्ष 2083 के आशीर्वाद इस बार सभी नगर पालिका पर विभिन्न अभियान गठन भई कृषि विकास शाखा मतदान पत्रिका क्रियाशील कृषक समूह नवीकरण का नया गठन भई जनता मतलब ग्रंथ करने इच्छुक।

संध्या सवा छ बजे हमारा संदेश महात्मा का स्वागत नाम कुमार उत्पादित हमारा संदेश प्रक्रिया का साथी एफ एम राजापुर और एफ एम गुलरिया पार्टी का रेडियो प्रतिबोध एफ एम कोबरपुर रेडियो हाथीमारो चांदी गांव पालिका बांटो स्टेशन प्रसारण किया। हमारा संदेश का भागीदारी मुख्यमंत्री समाचार का शीर्षक से बांसवाड़ी का खर्चे खोलवा पुनी ब्रिटेन और खामा जोखिमपूर्ण यात्रा बांसवाड़ी छह करोड़ कार्य पांच छह से नब्बे जनक तत्तानवीकरण पर्यावरण सुकुम वासी उत्तरी पुनी दुकानदार पूर्णा रात में पूर्ण महिला का प्रहरीकरण उद्धार पूर्व चार्जर कोट में पहले में प्रखर चार जनक चैनबे जोखिम नामक स्थान का दुई सौ जहां सुरक्षित ठहरना सार्वजनिक

समाचार बांसुरी नगर पालिका दुई लांसा स्टेट अट्ठेपुरमा पूर्वी दुई स्थानीय वासी बर्खास्त वर्षौं से बर्खामा जोखिमपूर्ण यात्रा गर बाध्यबाट सामान्य अवस्थामा खोलमा नाका सेट नलगासेटे बर्खामा पानीका बहाव प्रभेद आउट आउट स्थानीय गुनासोमा दैनिक काम छैन सर्वसाधारण विद्यालय छैन विद्यार्थी किसान ज्येष्ठ नारी तथा पर्ना मुख समेत जोखिम मूर्ख फुलको पार्कमा पर्न अवस्थाहरूमा स्थानीय उदय नाम बुढाबाट पानीका बहाव पर्वद्यालय गाउँसम्म पुग्न वैकल्पिक नगर समेत समस्या थप गम्भीर बन्न भएकाहरूमा विशेष गरी कपडा स्कुल जैन र टाउन सुरक्षित रूपमा स्कुल पठाइन खराइदेखि अभिभावक चिन्तित हुनाहरूबाट वर्षौंसे पुल बनाएका आफ्नो समस्या समाधान नै हुनप्रति स्थानीयवासी आश्वासन सिते सुरक्षित आवतमा तत्काल पुल बनाएका सम्बन्धित निकायसे मार्गहरूबाट यहाँ बाँसुरी नगरपालिका पुरा नम्बर दुई दौरान्त क्षेत्र अर्जुन खड्का घटे पूर्वमा पुल बनाएका ठेक्का सम्झौता प्रोत्साहन जनैलबाट ठेक्कादार पुल बनाएका आवश्यक सामान निर्माण स्थलमा सर्ना काम प्रतिरोधे पुल बनाइना काम शुरू हुन उहाँ जानकारी पुल बनाउन पाँच स्थानीय वासी प्रथामा होइन आवत जावतको समस्या समाधान होइन उहाँ प्रायमा कठ्य खोलामा पुल बनेना ठेक्का हरि निर्माण सेवा पार्टी पहिलाका निर्माण सेवाको सञ्चालक गणेश मान पाण्डे पुल बनेना सामान छर्ना काम वितरण जनाइकी पानी निपक्षले यहाँ फटौका 10-15 दिनभित्र बनेना काम शुरू हुन जनेरबाट पुल बनाए शुरू गर्दा तीन महिनाभित्र हजुर काम योजना निर्माण सेवाका सञ्चालक पाण्डे जानकारी दिनबाट बाँसुरी नगरपालिका वडा नम्बर छका कार्यालयमा सार्वजनिक विद्याका दिनको सामाजिक सुरक्षा पत्रमा वितरण गर्दा वडा कार्यालय शनिशको अटमारक दुई सामाजिक सुरक्षा पत्ता लाभकारीका सामाजिक सुरक्षा पत्रमा वितरण गर्दाको सामाजिक सुरक्षा पत्ता नै वितरणमा से क्युपी सेवाद्वारा हिँड्ने छुटेको छैन व्यवहार अनि परखना उद्देश्यले वडा कार्यालय 30-31 गते बिहान पुल अनुसार सामाजिक सुरक्षा पत्ता नवीकरण गर्न वडा दक्षिणा बहादुर सेठी जानकारी दिनबाट वडा कार्यालय अनुसार दुई दिनमा 609 सामाजिक सुरक्षा पत्ता लाभकारी गरेर सामाजिक सुरक्षा पत्ता नवीकरण गराएर वडा कार्यालय चलेका ज्येष्ठ नागरिक एवं महिला अपाङ्गता उन्नत मनाइ तथा दलित बाल बालिका हुकन अठारके बिदाका दिन आफन्तसँग वडामा जनाकेटा नगर नागरिक हुकन सहजो छिटो छरिटो सेवा पुगेन स्थानीय सरकारको प्रमुख दायित्व रहेको कर्मचारी हुकन खटाखर सेवा दिने वडा प्रशासकीय प्रक्रियाबाट एक नम्बर बाँसुरी नगरपालिका वडा नम्बर छका आसमा चौधरी पठाइल बाँकी राजापुर नगरपालिका मधु एक गते काल स्थानीय विद्यालयका नाग पञ्चमी अर्थात थारू समुदायका पहिला तिहार उडिया अर्थात पर्वको अवसरमा नगरपालिका एक दिन स्थानीय विद्यालयमा निर्णय गरेको नगरपालिकाका 2082 साउन 29 गते पैसा प्रचारीका निर्णय अनुसार पन्ध्रै गते राजापुर नगरपालिका तथा महाप्रशासकको कार्यालय बन्द गर्न जनाएका नगरपालिका सम्बन्धित सबको जहान पीडाका बारेमा जानकारी गराएकी निर्णय अनुसार कार्यालय सञ्चालन निर्णय चलाइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी प्रसाद बुढासी हस्ताक्षर सूचनामा से नाग पञ्चमी अर्थात कुरिया र यी पर्वका अवसरमा स्थानीय विद्यालय प्रज्ञाका बढेपाल नगरपालिका चार खैनीका वर्षौंसे बसोबास गर्दै 27 भूमिहीन सुकुम्बासी हो 2 भूमिहीन दलित गरेका 29 चहान जनता धनीलाल पूजा पहिलेबाट भूमि समस्या आयोग पूर्तिया करिब 1 वर्षसे गर्दै चर्चा वितरण प्रक्रिया कैलक प्रसारको पहिला अखबार निम्ति गरेर कैलक प्रसार 18 गते भूमि समस्या आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष बलराम बास्तोला पूर्तियाको प्रमुख जिल्लाधिकारी भुवन बहादुर हमाल प्रयत्न गाउँपालिका वडा नम्बर 4 वडा अध्यक्ष नरेन्द्र थापा लगायत संयुक्त रूपमा 29 हजार पूजा वितरण गर्नुभएर उहाँ हुकन छ विकास क्षेत्र 3 जग्गा वितरण गरिएका
तात्पुरुष अल्पाश सुकुम राशि सहित वर्षों से अमर छत्रपति जनता खसी का चली के रूप में आपका पुनः चर्चा में ठुकता हुआ बैठक बिना कति खुशी व्यक्त करता कि उसने क्रम पर हर फुलराम थारू पचास साल से बढ़ गया का कम का प्रोग्राम से सरकार हटाए पांच खैरानी में पैचरी प्रक्रिया बाट वहां के अनुसार खैरानी में पशु पास करना करीब 90% किसान और क्षेत्र माठिया प्रक्रिया के प्रत्यास बाट कार्यालय के अनुसार बढ़िया प्रांत पालिका चार में आखिर 240 जन सुकुमवासी तथा भूमिहीन दलित जनता पाए बाकी बाट वहां अध्यक्ष नरेश थापा अनुसार पूरा 1,100 अव्यवस्थित पशुवासी वहां ऐना दशा आगह प्रशासन अव्यवस्थित पशुवासी द्वारा पूजा वितरण करना हो सरकार आवश्यक सहयोग करने से अभिनंदित रहा सब कुछ हमला पूजा वितरण करना रक्षा पत्र यह बीच विकट हित भूमि समस्या आयोग पूर्णिया जिला में 46,672 जन फार्म भरना आयोग का सदस्य सचिव एवं नागपी प्रमुख धर्मराज ओझा के अनुसार 33,467 अव्यवस्थित पशुवासी 8,186 भूमिहीन सुकुमवासी हो 5,019 भूमिहीन दलित आवेदन देनेवाट बड़ा संख्या में आवेदन प्रगति से सबकुछ जनता प्राप्त करेगा विषय चुनौतीपूर्ण बन वहां कराएगा 13 वर्ष 29 गते भूमि समस्या आयोग गठन हुआ आयोग भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुमवासी व अव्यवस्थित पशुवासी का 3 में 1 निवेदन प्रगत बड़ा संख्या में आवेदन प्रगति से

0: किसान उपयोग करें मात्र समय को बढ़िया ढंग करना कृषि प्रविधि सुझाव करेगा। दूसरा अनियंत्रित प्रयोग से माटी पानी वातावरण पशु चौपाय और मानव स्वास्थ्य में असर पारस्थित लोगों से सुरक्षित तथा वैकल्पिक विधि अपने कृषि प्रविधि करके कार्य करूंगा। चौधरी रेडियो पूर्व में बास्करी बोल रहे
1: नदियामा पुग्न बाँटे गरेर पुर छ एक महिलामा प्रहरी सकुशल उद्धार गर्दा इलाका प्रहरी कार्यालय भगवान पुर्ख प्रहरी निरीक्षक सुरेश कोइरालाका अनुसार रनपुर छ 24 अधिकारीपछि शेष रानी यादव प्राप्त नदियामा पुग्न जानकारी पैदिकी तत्काल छात्र सकुशल उद्धार गर्दाको महिला पुग्न जानकारी आइदिएकी भगवानको इलाका प्रहरी कार्यालय बिओपी करुणा पुरुमा सशस्त्र प्रहरी श्रमिक का टोली नदियामा बैठक महिला सकुशल उद्धार गर्न प्रहरी निरीक्षक प्रेरणाबाट महा उद्धार कार्यमा स्थानीय बासिन्दा गण गर्दै सहयोग गर्न चाहिँ उद्धार कैलाख महिला र बिरुवा मित्रलाई चाहन्छ। बलताका समय र खुसी राप्ती नदिया हो औरमा निजाय हो तटीय क्षेत्रको बास सर्वसाधारण भूकम्पे माध्यम से अर्जी कदक जिला प्रहरी कार्यालय बाकी जानकारी करेगा। चार्जर कुटका भेरी नगर पालिका वार्ड नंबर 2 चीसा पानी में पहले चाय करके पत्ता सर्फेदा दिया जिला प्रहरी कार्य चार्जर कुट चले लगा इस पहले में पत्ता ज्ञान जीना का संख्या चार्जरकोटमा चार पुगेका अग्रण वर्षाका कारण पहिरोको उच्च जोखिम र चार्जरकोटमा भेरी नगरपालिका 2 क्षेत्रमा करिब 60-70 घर परिवार र 20-30 जना स्थानीय वासीहरूका सुरक्षित ठाउँमा सारिएका जोखिम र स्थानीय वासीहरूका किसान स्थित भवन आधारभूत विद्यालयका भवनमा सुरक्षित रूपमा सारिएका स्थानीय वासीका उद्धार तथा सुरक्षाका लागि प्रहरी सहायक निरीक्षक प्रेमबहादुर फौजाका कमाण्डमा 10 जना प्रहरीको टोली परिचालन गरिएका टोली जोखिम र नागरिक भवन उद्धार स्थानान्तरण तथा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थामा निरन्तर काम गर्दैबाट पहिरोका जोखिम निर्मित ठाउँमा से उद्धार तथा साथमध्ये छ्याली खेत डाँडा मसे 16 जना चेसा पानी मसे 20 जना राउटेले डाँडा मसे 15 जना वो किसान फर्ना मसे 149 जनाबाट 80 जना निर्मित ठाउँमा से करिब 200 जना सुरक्षित ठाउँमा सार्दा अस्थायी बासको व्यवस्था गरिएको अग्रण प्रशासन सहायक नगरकोषले किसान क्षेत्र अवरोध जोखिमयुक्त बस्तीका समेत निगरानी बनाएका जोखिमको अवस्था हेरफा थप नागरिकको सुरक्षित ठाउँमा सर्न तयारी समेत गरिएका प्रहरी जनाएका। नगरपालिका 2 राजा स्थित भारतीय स्थानीय वासी वर्षों से प्रधाना जोखिम पूर्ण यात्रा कर बाध्यबाट अब उसी दिन में पूर्ण संचालन होना पूरा कार्यालय का पूर्वमा पर्खा 4 जना जोखिम किसान र 200 जना सुरक्षित ठाउँमा सार्केलमा नेपाली भाषक हाम्रो सन्देश देखाइबाटी समाचार कक्षका सकुशल प्राथमिक सङ्ग्रह गौरी शङ्कर क्यामरामा रमेश सुन्दर महेन्द्र कुमार भेटिरहेको सुन्छ। जय बाबा।

चालू आर्थिक वर्ष 2082-83 में इस बांसुरी नगर पालिक का विभिन्न पुराना गठन करी कृषि विकास शाखा में दर्ता 81 समूह प्राधिकरण नया

हमने कोई कभी संक्रामक रोग के कारण बालबालिका को मनोविज्ञान में प्रभाव के बारे में कुछ भी प्रश्न जिज्ञासा गुनासा और विचार तपाईको आवाज में लेकर हमारा आइडिया नंबर 0152 68

0: सुनोस क्या समाचार।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार नेपाल में 30% वयस्क जनसंख्या उच्च रक्तचाप को जोखिम में छन्। प्रसूति कोठा तैयारी खाना जंक फूड तथा डिब्बा का खाना में सोडियम धेरै हुने हुँदा मुटु रोग को जोखिम बढ़ाने। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एउटा

0: The new Umbrella FM Umbrella, Sun Hypnotized and Beast.
1: आपने कहा आपने आवाज समाप्त करने के लिए पूछना चाहा था, यो ये जो प्रकार है, मैं आपके साथ समाप्त करूँगा।

अस्क्रीम अगर बनता और बढ़ता तो खाना उपयोग दिया वो प्रॉपर्टी चाहे मुझे उद्योग बदलता का सिखाता जितने किसी का अवसर मिलता प्रॉपर्टी चाहे मुझे उद्योग आता Thank you.

0: 사치가되나하고떠나서네미라미도가라기치료테라피를타이코펜셜테라피코피니바타우프사르드인사
1: 나사치가피타피라미르코비나오페션피료테라피도타이코펜셜테라피바타사포르우프사르드인사
0: 미라미르코수비다코라기24시간타앰뷸런스코베바스타가리에프사파사메나그리키에컨마히라아난다바리카아판나트레스나그리코라이오사디바이아네스콘세바나10% छूट को व्यवस्था कर रही है सर कोशिश है आपको तरफ पर इस संख्या को थोड़ी सी खास कर दी
1: संपर्क नंबर 0044001 और 0044301 मुझसे आज मतलब बात करी खराब तो नहीं।